खनाई रंगसाटी दाखुबुखुक आ सूगजरा जंग खनालायखा तिरिनी फुंनी अपानदाहु दियाईमणि रिजाबमं दाबुक जिंग दादाखिदा खाबलायनाय तिरिनी सालगामा पानदाहु खनाई तनै रंगसाटी दाखुबुखुक नरक जतनेनो बेलाय बेलेखेनो हामबाय आफारु ते बेलाय बेलेखेनो लामसगु तिरिनी साल साल चिस्टी मे ককটি শাল চিবরিরা থামচিবা দুইব্রা বিশী

आव साखामनि कक खोनामानि सकां सों ताबुक तांबितिनि कक थाइजाथायनि खोनायै नायलायग्रावानो तांबितिव खोनालायानो ससा कायमोन रोगै कक थाइसा थायनि पद्रे पद चामुंनि बिसिङ ससा बुंखा कायसा बेलायनो कथक जामुं भारत हाखतरनि बेबाक थायन ससा न गायै सों रां पसारक आजिमानो ससा न सों इंराजी बाख्या किउकाम्बार होनै सिनिब गुबुनि हास्थिनिहाय सिनर बहायनो ससा न सों गायै रां पसारक आजिमानो ससाव गोबांकुक भिटामिन ए मानथगो आबुनो कारिब ससाव सर्करा केलसियम दाय गोबांकुक दै मानथगो अमहाय सासलां मल ससा जाखांके शाक बेलायनो दंथगो दाय शाकनि बागै बेलायनो गाहाम बन कायनो थांखांके तामु तामु ख्लायनो नां आबु गिसा सायमान लायनो बिनि बागै कायनानि जे गाहाम नबरतिबार आबु हंखाय इंराजि ताल निंके फेब्रुवारिनि सिमि मे ताल हेके यां बैशाख ज्येष्ठ हायाके सेप्टेम्बर दाय नभेम्बरनि गोचार बहायनो ससा गायै मानो बन कायनो थांखांके पैलावनो हा चुवायै सुबुक सुबुके चकामर सहैमा नागारनाय आबुनि यागुल सों लुन दोंसा खावैनाय आरो बुसलि कलसा कलसाके फबै सों गायमानो हायाकेबा हा खनैनाय गिदिं लोलोखे नावै आरो कलब्रै कलबा खेबो फबै मानो आबुनि यागुल हंखांके सों जे जराव ससा चारा एबाके बसा आचावै तरसावै फायवा जरा हंखे वाफिरक गायै रिना नांनाय दाय चारक दांगै रिनानि नांनाय गाहामबोथाय थारना थांखांके सों हुकबार बेदेक बाय थांगै मालायै हारक आमजुगुइ तामु तामु बिथि बोरायरक रैमान आबरक सों सिउै नायमानो गाहामबोथाय थारना थांखांके सों आबोथाय थारनानि जराव दाय थारनानि सिगां बजारारगो बिथि बोरायरक रैमान आबो सों हकबार बेदेक बाय गोरोङै दंखांके बेलायनो जाखुगो उराम उराम तैरक लुवै तंनानि नांनाय दाय आबहायखेनो सों ससा गोबां खेथायरिउनाय सों हाथिरगो फालै रां पैसारक आजै मानो के आसोग जरा खोनालायखा ससा गायमोन रोगै कक थाइसा थाइनै

आणि या फौतंगो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशननी बिशिंगते आगरतला त्रिपुरा हाफांगनी बिशिंगो तलांगजाकनाय रुरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एबाखेबा कामी हामक्राय बेदेगो जुनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल बेबागै बुकचा आचुकथाय दङ खरक बा रोंमारिंना नांनाय गसिजेक इउनिभार्सिटिनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियारिं

0: अब चिनी हार्ट बीट नि अब जत्निचलाई तलानी जे लेभल आफ्नो रम्जाको सानानी था कहानीके आ रिडिङ डायस्टोलिक नि साकाओ सिस्टोलिक तुमुङ अब खबुइत लाङ थानानी था कहानीके नुकजाक मारिगो 120/80 उङ्याखेबा 120 उङ्याखेबा 80 आप्ति हेखे नुकजाको आबोङखा नर्मेल एबा आबो आबो आमसुखै तङखाहनके बर रोग तै मुङसा केबेङ मुङ्गो कलाइया आम्ति हेखे साजाको तुमुङ आबो बिसि उमर बिसि तुमुङ दक चिनिसलाई गोबां कुक हनखेबा साकाओ आबो 150 उङ्याखेबा तलाओ 90 तुमुङ तङखाहनके आबो हाइपरटेन्सन उङ्याखेबा उच्च रक्तचाप निखे रमुइ नाहारजाको दक चिनिसलाई गोबां उमर बिसिनि बर' रगनि बागै होनखे आव जों हाइपरटेन्सन उङ्याखेबा उच्च रक्तचाप जे कक जों सालायो आरो नि बिसिं तुमुं जों चिनि थैनि जे चाप उङमानि उङ्याखेबा थै जे हिलिक मानि बा थैनि जे याक्सि याग्रा जे सिक बो चाप रुजाक मानि रमदि आबो चिनि बोखानि चिनि थैनि थांलाय सौख्लायमानि लामा आबो दमनि जे परिमानो आबो थै थांलाय सौंगो आ जागाओ गेबें मुं तै आबनो कारै चिनि बोखानि दमनि ओ थैनि थैनो पाम हाइखे रोजागै तुमुं कदख्लायै तुमुं थांगै दंखानखे आबो बोसाकनि बागै हामया होनै साजागो पैलाओ तुमुं नों गाहामखे सायमाननानि बागै एबा निनि हाइपरटेन्सन तरा दं गोरै आबो हाइरग सायमाननानि बागै चिनि बोसागौ गोबां मानो नुगजाक थाइरग नुगजागौ आव रांसाकनि दाखुबो खुब ककदुक सक बायजाक फायदि गोरोङै नायनो साबु दं हेल' हेल' फुं गाहाम दाखु बेलाय बेलाय खेनो फुं गाहाम बेलायनो फुं गाहाम साबुं खासागोनि दं
1: आंयां शिव चंद्र पारानी रविंद्र देवरुमा
0: अच्छा अच्छा दोसादि
1: गतिनी ने टेंशन प्रेशर न तुई खाइ जोंना
0: हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन
1: टेंशन
0: ई
1: के सं तो नोक नु खुंग न तुई ब साइ मा न खाइ दब बा
0: आउ आउ आउ
1: नोक नु खुंग ब टेंशन न लाइ मा नि तोंग ला माने के सं बेलाय टेंशन न खा के बेलाय थाम जी न खा के ब दो माने के प्रेशर दे कुनु रोग नुई थांगो मा जागे थांगो ता बा
0: आउ आउ
1: टेंशन माने परे जों आसुबो टेंशन नै खायो थाखियांगा के आथम साबा फेरिया दबा गे ताम जानि मिलिं मालां थांगो मा हायराव बुंलो बाय जों टेंशन बिसिं बिसिं तै थाम जे टेंशन आव मते एक दैनो गे थै सिनि सल सलंगया थै र माने के जमुगै जमा बागै बागै आव मा हायराव ओ गे सं किसा टेंशन न सं गम खानो
0: ขยังอาสาวเกเลยแดนชนต้องหากบงยาให้ได้บ่บ่าซึ่งต้องน้องนูคงบ่ต้องซึ่งปอดได้ปอดเนาะหามยาบ่ไม่แท้ดาอือๆก็ซึ่งเนี่ยบ่น้อก็คักตื้อหมอเนาะบ่เนี่ยซึ่งวานสุบ่นี่นี่บ่คันบ่จุบ่ซึ่งหายใจกะไหลอยู่ตาให้ได้บ่บ่ายอ้าวๆอ้าวซึ่งตาบ่บ่น้อบ่ก็หายใจบ่บ่มาให้นี่บ่ละซึ่งอีก็ล้างจักมาอย่างเงี้ยได้บ่ आबो टेंशन नंजाखनाय गरे टेंशन तांदि ट्राई खाइ थांदि नों जायदोंदि फिया बा टेंशन तांदि आव
1: कक नमा सावता
0: आव आव आव आव
1: नों जतन कक दु करना बागै बिजिं दङ
0: आव आव आव
1: थांदा के बखरंग न थांदा के नों कल खाजा के कक दु करङै
0: मानाय द बेलाय बेलाय खान हामबाय न न करङमानि बागै বেলে বেলে খেন হামবাই রংসাক নি তাকুক তৈব খুকসং হাইপারটেনশন অবনরগে যেন ককলাম সালাই দঙ্গ হাইন হাই গরঙ্গে নাইন ককটুকু সাবু দ

0: ओंगै बाहान फायगानगे आबनो कन्ट्रोल खालायनानै ओंगैखे आ फेटनो कन्ट्रोल खालायनानै बेलेखेनो नांनाय निनि दुमा बिरि सिगरेट आमतिहाय गोबांमा एल्कहलिक ओंगैखेबा केफेक्टनि मानै चामानि नोंमानि चवाक आमतिहायरक निनि बैसाखनि थैनि जे लेभेलनो आबो जुदा खालायि खिबो आबनो नों गाहामखे वानसुगै नोंयावै इंखेबा एल्कहलिक इंखेबा केफेक्टनि मानै आमतिहायरकनो चायावै दंनानि नांनाय साजागौ आबनो कारैबो रमदि नों निनि चामुं नुमुंनि जे मुंगो रमदि दालो साम्प्रा बेलेखेनो मैखोदों थाय गोथों दादाक्सिदाक बेलाय काहाम गोथां बा खाग्द्रप ओंखेबा खलद्रप आमतिहाय दालो साम्प्रा आमतिहायरक बेलाय चानानि नांनाय निनि डायेटो जेसकेफानो पटासियाम गोनां मानै चानानि नांनाय रमदि पटासियाम गोनां मानै रकनि बिसिं मटर थालिक पालं साग एखेबा पालंनि जे सागनि जों जालायमानि एभकाडुस ते मासरुम रक जिनि ताबुकनि अजाराव त जों गोबां कुखनो मानो मासरुम एखेबा जिनि मिखुमु मिखुमु हाबलक बा आमतिहाय गोबां ट्राइबनि मिखुमु जों मानथगो आमतिहायरगो पटासियाम गोबां दङ हे रमदि जे जों स्विट पटेट' ओंखेबा रमदि आबनो जों जिंगा थाक्तै ओंखे ससा ओंखेबा कमला आमतिहाय मानैरगो गोबां कुख्लायि पटासियाम दङ रांसाखनि दाखो बुखु पायथागो ककदगो गोरों नायलांगानो साबो दं हेलो हेलो
1: दसादिखिसा
0: फाट फाटके सासिदि বেলাই বেলাই খেন হামবাই জরা বেলাই নকরিখা রাংসাক নি তাকু বুকু হাইপারটেনশন নরগেই কন্ট্রোল খ্লাইনানি এবা নং আবনো নাইকানি খ্লাই তংনানি বাকি নিনিনো খ্লাই থাই তামনি হামালে সং সাখাম জিনি বুসাকনি কাহামনি বাকি জিনি চামং নমং খালেই তংনানি নাং থাই যত ককদুকো গ্রংনাই রকনো বেলাই বেলাই খেন হামবাই হাইন হাই কিটিং ফিনাই জং তৈকেশ সালো মহাই কক প্রথমা তুবুই তিনি জরাতেই আং আর জে উষা অর্ণবাসা সিনু তিনি নিশালকামা বান্দানি যতনেন হামবাই

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको।
2: आकाशवाणी अगरतला शुरू होच्छे अभिज्ञापन।

0: मेहमान तू।
1: अरे तिवारी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक?

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।
3: क्या बात है।

0: नि उलो नंग तामरो ख्लाइनानि नि वानसु
1: आनि तो हाबैया गानन समय तो सखय दं ख मेडम
0: हाबैया
1: माया तानै आं 29 नि दिसेम्बर आनि
0: या करनानी आओ आओ तंग खुदेबो आओ तब तो 26 इंगे 27 28 तीन बहुत छोर तो तंग खो बिशित हम तो तंग खो इंगे अबो या करमानी उलो निनी निनी लाइफ नी ते अबो ते कैसा बेचे ब्लेची नी चिंग पुलिया निशिमी सिकला सिकला चासलो रंग माने सरंगो अबुन पड़े सेबोगो हाबो सेबोग नी बोरी

0: sabdu sabu mukhan sangal na chodu gna nu dachko
1: आओ हाई ना हाई जंग खाना लगा बुखो को लोको पुती देवर मने खड़ांग कती बेखे रचाप जाक रचापों हाचक ने रचापों बैलकेनो खाना तो हाचक ने रचापों चीने खाना बैलकेनो खाक्सांग मारियो बैलकेनो यारंग नो चीने याफंग यारंग नो चीने लाई थांग जाक कथो मारों नो हुकुमो मुकुमो नो जोनो मुईतु खलाई रिवो हाय दे ओजरो वो हाई ना हाई তেতংস খানাত তো রুচাপুংনি ফাইচিং থাংলাইনে খানানে দিয়ে ও খানাত রুচাপুং

आउ बेलकेनो खनाता तो रिचाप मोंग चंग हाइनो हाइ खना लेपिका बुखो क शिवो मोक नि खरांग कति बेके रिचाप जक ओ रिचाप मोंग हाचंग नि रिचाप मोंग खना का हिंगे सिनी खा बियांगो जानि बो गमावै थांमो हाइ मा तंग आगे नि जरा वो सं थांगे गाइडिंग साकाओ काशावै नववार शिव शिव खलाये तक्षा तंगमुलिनि खरांग खुंजुव बुहरो हाचंगनि मांगपुलि मकलो हाइनो हाइ गथां उंगै फाइफिरो नबार दम दम माइबलाई

आओ बेलाखिनो खनाता तो खर चाप मुंग जंग खना लगा बुकोक शांति चिरान नी खरांग कते बेके रचाप जा ख अ और रचाप मुंग खाखलायो नरोग बो खना तोक जा बाय खना हिने और रचाप मुंग चिनी जंग गबांग मा बसों तो चिनी हाया देबाना चिनी बसों ने बिशिंगो जंग खरक्सानीते खरक्सा जों ककमां आसो बुजिथाया बा जों सावै मैना फियाबा आबोनि जे रागिनी आबो जों फियाबा खनावै सायमानो बुजु जराते खना थत हेदा आ अजरो हायनाय तेतांस खना थत रिचा पुनि फासिङो थालायने खना दे अ रिचा पु नरो जो तने बगाय

औ तुमारेगीसीक या फवा सख जरा करी कैसी नहीं बकरी बदल नहीं जरा नहीं फैसेंगे थाई तंगा बकरी बदल नहीं सुना किसी सा हेडलाइंस नेस मंत्री ओकरा प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह मंत्री ओकरा उंग माने बिसिक ब्रे पुमानो रगे बमिया कक्तम माथम नाय रखनो शाका हस्ते हापने बेबाग नायखं काम करन बताले मने बिसिनते हम करायनो बुसकांगे तलांगे तंगो CBI mian need use nei sai nei sidok amchok mungne biology sungmung bulai kar exam pate mungo gadalja khoroksha phrangnai no romkha kok silcha jakni mung Monisha Gurunath Mandhare sakham tangra kiran gite mia jibi sakham no sarai rokne bakhata beman nai ne alai de upide setana jengai rikha tenin bagai kobra ai FM news headlines asuk

0: वो हार्ड वर्क नई को किसा सानाई चीनी बरक नि साको फेकजांगनाय कबांगमा बे देखती न तंगो एग्जांपल अंखा चामानी नंगमानी कुसुमानी आबोहाय फेकजांगनाय तंगु ते सोशल मीडिया एबा एडिक ओ एडिक होल लाइफ याखेबा थांसुंनो स्पॉइल खायरिउ नरक न आं सानामुचुमानी खे एडिक कक्से ओ एडिक्ट अंखा हार्ड वर्क याखेबा परिश्रम नंग कुबुई न फेकना मुचुंखे ते ननके बो कासुई मांगला ओ फेकना नि बो आसो गलाया बरक एडिक्ट अंगै थांगो जतो फेक जांनाय आबो किसा आलादा दाल बिदाल आबन बो ख्लाय मानिया हार्ड वर्क कुबुई एडिक्ट तामो हार्ड वर्क ते बसक तं ते तामन हार्ड वर्क खाय तं नंग ठीक जगह दे हार्ड वर्क खाय तं एबा रंग जगह हार्ड वर्क कुबुई एडिक्ट तामो हार्ड वर्क खाय बसक तं ते तामन हार्ड वर्क खाय तं नंग ठीक जगह दे हार्ड वर्क खाय खाय तं एबा रंग जगह दे जों पंक्चुअल बतंना सरगना नांगो टाइम नो प्रायोरिटी रिवै लय तंना नांनाय जों कवर हाइके सामुं तांगो हार्ड वर्क खायो आफ्रो कोनते टाइम टेबल करै थैना थांना सिया आबोनो आबोहाय न जों आबोहाय न परिश्रम एबा नेशा इमां तंगै न ओ नेशा हाबो बाक्सा बरक तङ बिजा परिना सैनानि तेबो तङ थांनानि बेरायनानि गेम थांनानि ससियेल मिडिया बाय तंनानि अबो एडिक काहामनि साइटे हामिया साइट तङ नों बरक ओंगै नि बख्रगो बखावान सुखमा काहाम मानसुंनानि नांनाय नों साखननि लामाबो साइट काहाम ओंनो होनै डिसाइड मा खायनाय खायखे नि नाहार मुंनो मुखथांगो तुबै फुनुक माननाय गोग्रोग वानसुकमा नों क्लियर खेनि माइन्डसेट न काहाम गोग्रोग साइट टुवै वानसुखे लामा काहाम न डिसाइड खाय माननाय फियानि वानसुकमा हामियादै वानसुखे नि लामाबो कुनु डिसाइड खाय मांगला लामा नुगला खायसे नों लाइफ बो तामो ओंना मुचुं आबो निनि माइन्डसेट न क्लियर खे नाहानानि नांनाय निनि फोकस न थिक जागा गुबै बायखे निनि ब्रेन न थिक खे नाहाना नांनाय निनि बख्रग न नों सिया तामन बांकुक नों मुचुं गाहाम खे वानसुंनानि हायाखे सक्सेसफुल खायमांगला लामा याखेबा स्टेयर्स अ नों याप्रि रना बागै नाहार मुंसे तंना नांनाय हायखे से थांसुंगो लाइफ सक्सेसफुल अंनाय देरारानि बकाति रनाय आ नों डायरेक्शन नों पजिटिभ मांगना वानसुकदि नेगेटिभ डायरेक्शन ता खायदि थिक ते कुबुइन कुबुइनि डायरेक्शन खाय या एबा हार्ड वर्क खायना नांगला बखारुइ न सामुं न तांदि लेखा पढा सोरोंमा बो आबहाय न मल्टिटास्किं सामुं न ता तांदि मोबाइल स्मार्टफोन न रं न हामिया लामा अ याखेबा उद्रु मुद्रु ख्लायरिव हायनि बागै बखानो कराखे निनि इमांन मोखथां स्नामना न नाहारदि लांमाव केबें मुं तंफानो निनि नाहार मुं गुबै ओंखा खे केबो कासुवै मानियान न अ मेसेज जतो जेरायदे दिनि संनि बागै
1: एन्जेलानि मेसेज नरक सायदेमान ताम न ब सानानै थांगा जिनि त्रिप्रा हाबो बेलायखेनो एडिक्टेड हेकबा अमाहाय फेकजाकनाय मानै रगबाय गुबुलजाक आबनातै ब सानानै थांमानि हार्ड वर्क तामो आबो ब दिनै जोंनो जेरै सुक्रबे हिसाबै खोनारोखा ते दिनै सेकेबा सिख्ला सिख्लिज्राय रग न ब अ मेसेज रोखा जे काहाम तंनानि तंखर काहाम सानामनानि ते साखबाय थां बिनि माइन्डसेट न काहाम खालायनानि ब नेगेटिभ वानसुगेवै पजिटिभ वानसुनातै ब साय खोनारोखा बेलायखेनो खोनाथखाना बिनि अ मेसेज रोमानि यागुल' दाबोजों खोनालायफिउनाय आरबनि खुगदै आरबनि जे ककटां ब दाबोजोंनो सायखिनारोनाय
2: आनि बुमुं आरब देबरमा आनि ककथां निमुं माफा खासियासा माफा खासिया बसा बखा तं ब गोरैहाय रायमा सामानि कपालहाय आतंनाय सातं वाथै माफा खासिया बसारक फायखै सालहर चुवाक तासबाय आजला साजोग संब मिया जागाव याप्रिरु माफा खासिया बसारक थांमा लामा थांग्या लामा थाइग्रै চাইয়া মাথাঙ্গা

0: थाइग्रै हाखा सिया बसारो पिया लामा पाइ थागो आइमा साइमा संहाय मुत्रि हुई सा हि साइग्रै हाय बियांले थांसिनाय हाखा सिया बसारो ओक्तां ओन पाइखा
1: आरबनि कक्तां खडा खना दगजों बखेनारो
2: इ
1: या गलो हायनो हाय ते खरक्सा तिफां बबहायनो कक्तां न कक्तां तुइ फायुका बिनि खुक्ति बहायनो खनाय नायलाय फेवान
3: अनि बुमुंग ति फोंदोरमा अनि कक्तां उंकाय केयोगजा काफां तोंखा मकोलनि मुक्ति थांनानि सिलिया तिमानि बागै मुसुंगो काफनानि आशियोक सुगोय तुइब मानलिया मुक्तरै यासियाग्रा नाहार नायमानि नुखा हुइमानि कुबुइ नुखमान न नुखया नुखयावै खुनजो मुतुबै बाक्साबा तंखा साग बायथां सिमि न हामजाक खुगियु खुगि खुगै साग न हामजाक नाय दफा सिनिया ब दफानि बरकिया गसिमा गोनां तिब्रा हिनै ब थैनाय चबा दफा हामजाक नाय कुबुइ कक सानाय तिब्रा बसा ब सिमि सि उनजाय सिमि सि ओंनाय कक्तां अरन पाइखा
1: गेटिनि त आरबनि खुक्तिब कक्तां खनाका तिफांनि खुक्तिब खनाका एलिस तै एन्जेला बरनि कक्तां रो बेलाय खना खना तक बायखा तै अ कक्तां जे कक्लग ब्रब बाहायनो जों सरांनानै दङ तामले हनबा जिनि लांमा बाय गथकजाक अ कक्तां अ कक्लग ब्र बेलाय खन नांगक माने दिनिनि अ कक्लग कक्तां तै एन्जेलानि मेसेज बाहायनो बेलाय खन नांगक माने नंखा हंगांके ताबु आं नरक न आइने ति बाहायनो मेसेज कैसा रवाना नरक साइदेमान तिनी ओ मेसेज सिंगांके स्वच्छ भारत अभियान ते ओ स्वच्छ भारत चीनी हाकतर चीनी भारत हाव बिसक सामंग फनांग टंखा बिसक चीनी बागे कहामंग टंखा आपना ते सवाई खनारे नाई नरक साइदेमान चीनी भारत हाकतर नि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत हाकबा क्लिनलीनेस न ते सामंखलाई टंगमानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या प्रेरण हरमानी ओ जे सामंग बतांग बसक चीनी लांगमावो हाइकबा चीनी भारत हावो फनांगै दंखा हंगांगे जों साइमानो मो हंगांगे महात्मा गांधी जीनी इमांग टंगमानी से गांधी जी बो जे सालांगमानी बो जे ख्लाइलांगमानी आहिनि ओ सामंग बारानो दाबोक चीनी मन्त्री बखर बो ओ सामंगनो तांगै दङ तै बिनि इमांगनो गांधी जी ने इमांग नो मुक्तांग सामना ने बागे सेकेंड अक्टूबर जी ने भारत नो चंग साझा के कचंग कुपर के सामना ने बागे मोदी ओ सामंग बतांग नो बरोक जे नहार माने अबो जी ने इंडिया वो चंग साइमानो दोली ने सिलाई कामी आमजाई है के वा पारा नो बांगो गो है ने बागे पारा आमजाई है के वा दोली रोगो साफ सुथरा का तोना ने बागे गबांग मा इन्स्टिट्युट अफिस आदालत स्कुल अमहाके जों सामं खालायनाय दङ आ जागानि दांनाय रग सेबक खालायनाय रग बाहायनो आ जराव हंखांके वाफ्रा तैन जाब्रा बब्रान साफ खालायमानि जों नुगुइन दङ आबा बेलायखेना नांगक मानि न ओ सामं जिनि बागै बिसोर गुजुग काबै दैखा जिनि भारत हानि मन्त्रि बखर ब फाथार हासेव थाङै नुगुइ ब सायमानखा जिनि इन्डियाव बेलायखेन नरा जेदरा सिद्राका तंमानि हाइनि बागैनो ब अ या पिरिनो नाहारु हंखांके तायब सानानि थांखांके जिनि मन्त्रि बखरक ब 25 सेप्टेम्बर 2019 स्वच्छ भारत अभियाननि बागै ब गेट्स फाउन्डेसननि बखाकतै कैसा सकाट मांखा सकाटनि हिंखांके बुमु ग्लोबल गुलरक्षक आबनि कैसा सकाट मांखा हंखांके बेलाखेन बिनि बुमु ब कुचुग कावैन दङ तै ओ जग साजग प्लास्टिक न खिबिनानि स्वच्छता सामं स्वच्छता श्रमदार स्वच्छता हि सेवा आबरङ तै बाहायनो सामं बतां नाहा जाका कामि आमचाय रग लामा गानागिनि रग टयलेट सुनामरनानि खिथाय नक सुनामरनानि तै आमहाय गानागिनि सिद्रा रग तनिया तै डास्टबिन खिबिनानि बागै हायकेबा सिद्रा मानैनो खिबनानि बागै बाहायनो लामा लामत्रों न डास्टबिन रोजाखा आ जागाव बुकुर सामानि मानै रग सिद्रा रग खिबनानि बागै रोजागो दै सामानि यागुलो बाहायनो लामाव खिबियावै सिद्रा खिबमा जागानो खिबनानि बागै जतन जेत

0: हाथों हने अब बहनो साजाका तजतो ना साखथाना नि नांगनाय अमहाय सामंग ना खायनि बागै जों केबोनो किसिल टंगिया बय जतनो ख्लायनि नांगनाय जों सायमानो जिनि एशिया महादेश नि बिसिंग कायसा जिनि नॉर्थ ईस्ट नि मुंगना शिलोंग अब बहनो मेघालय व कायसा मालिंगंग हने कायसा थाय आ जागा बहनो एशिया नि बिसिंग खबजाक ब बहनो बिनि मुंग ब कुचुगो काका बेलाखेना साफ सुथरा कसुम कुफुर तनमानि बागै आरनि कामयाम चनिज्राइरक बाहायनो जाब्रा बब्रा ग्लायजेक तंखांके बरक बाहायनो दासबिनाव खिबलायो फायदिङ सों बाहायनो हाइजेनिक तंनानि नांनाय सामानि सिगां दै जाबाय बाय बाहायनो या कांसुना नांनाय खिप्रु बाहायनो सिद्रा तांफ्रु बाहायनो साबान बाय या सुनानि नांनाय अमाहाके तंखांके चिनि लामा लामत्रों दै नगब्रा बारि कामी आमजारक बहनी साफ सुथरा तंगे चीनी हेल्प बहन कहा मंगनाई साग मांग बहन कहाम तंगनाई आउ नरक जतन यासकुर जतन साफ सुथरा का तंगमें बलाना जतन आंग नरक नो मेसेज रमानी हिंगा हंगे जतन कहाम ग्रं तंग चामंग नमी बिशिंती बहन जंग कहाम के तंगनानी बागे प्रोटीन जतिय प्रोटीन माने गनां आम हायरक जानानै नांनाय दै जों चिनि साग मांग कहामखा तनानै नांनाय आव लुकुरावबो सायमानखाना अबत हायनो जतन दैबसं सिजारनायनि बागै जिरायरंनि पान्दानि बिसिंथै जों सावै दंमानि
1: आं ताक तेका सकक्तां सानै आनि बुमुं ओंखा एन्जेला देव बर्मा तेयानि ककतांनि बुमुं ओंखा सामुं सामुं हामियानो हामियानो हिन्दी काहामनो बरम रिदि कहाम सामुं रुनाय सिनिमुं खुरजाकनाय निनिमुं हामिया सामुं हामिया तंमुं तुबुनाय देरामुं बिरिं परहयता ओंलायदि तुमसाके गोथाय तंदि कहाम न रमदि हामिया खिबिदि पालखे सामुं खायदि लगि बांफानो लगि हामियान हामियाखे हिमफ्रु उस्ता खनाय किसान नों अंबो लगिरक हामखे हिमफ्रु हामारि फायनाय मैतुलाय तैब सिया चरब हान खाया पहरन जेसक हुइना नायदि हुइ बतनी मानिया कहाम सामुं बाय आजिमा तंग्राकनायनि लाइबुमा हामिया सामुं बाय आजिमा पाइथागो माननाय लाजिमा तंकेसेब ओंनायनि लांमा आफ्रो फायनाय गिरिमा ताहिमलायदि आबो हायलामा आयां दिहिमखाय हामिया तखा जेसक फुना नायदि बगाहाय फुरिमाया आंनो रंनो ताक ते कायसा ककतां सायखना रनाय आनि बुमुं एन्जेला देव बर्मा तेनि ककतांनि बुमुं ओंखा थकाय आयां दागिनि गानाय बुइन थकिउै जानाय साक साक ओंजागो बेलाय सिनाय बन साबोबा सिमुं रनाय माननाय सालसा माजाखे सालिमा जाया बसारो कापमा थागिया सलक ब बुइन सानमानि थागिया खाति तनि ना बरङिया क कतर कतर सामानि थागिया नगखाय बिनि थापाहर चोङिया तंफुरुखे बिनि बोरों बोरों गोरैफुरुखे बुकजा सलक आरि न सानि मानियाखे बिघ्न बुसा बुसा साग साग न किसा मनसुगिनायदि गोरिनि याकनि यकना चायतकदि जे मानमानि सामुं खलायदि किसा मानमा बायन खा कचमदि सालसानि मानमानो किसा खातिदि गोरै फुरु अ सामुं फुनुकदि बरकन वाइसा थकिउै मानो वाइबाले थकिउै मानिया थकिचा मानि बेलायन हामिया लुगु बरम मानिया आनि ककतां अरन पाइखा
0: आव जोंथ' गोबांमा खोनालायखा ककतां कथमा ककलब्रक दै जों चिनि पान्दानि बायथागो जों बाल खेरा जाब जाग्रा जामुंनो खोनारोयैनो चिनियाव पान्दानो खलब लायसिबानो

अ मछले राजनी बिहेक चलाबालियाता कपाल करिनो कपाल रिमै यामा खनेदा अब तिन बिशा आशा तालनी ताल पिरसन्नी अष्टमिनी साल महाराजा मैसिली चन्ताई बाई खरंग नुखे मताई चिब्रिनी मताइनो गो हापका महाराजा मैसिली ओ चन्ताइनो तलांगे ब मताइनो गो हाबै काता खरंग निखाय आरो थांगै ब मकल बाई थांनो मताई चिब्रिनो नुगमानी तंगो गाय सेकांगो मताई चिब्रिनो जको हिं खनाता महादेव नुगजाख फु चिब्रि मताई ब बिनि आसुक थायो आसुकिन पुजि जाखा एबा मताई बगै खुलुम जाखा बबाय मताया को पाये खुलमैया कय महाराज मताई नि थानी बसा चला मासा सानजाखा याग्याफा फेलै बिनि बसा चला दिदि नै ब खुलुम जाखाता फेबा मताई कतर एबा महादेव बनको थाइसा बायन सावै दिखा कौंखा कतन कथा करिखै ब फलांग फलांग साका निनि बसा चला अंगला खनै आको खनावै महाराज थामची काजाखा ते थामची खाजागै मकल माखाल नुगलि आंगै थि उंगै थैना थांना सिलिया मताई कतन याकुंगो गक्सा तीर बाई कगै रिखा आसे जराते थामची कुतुं आबुनि बागै मताई कतर ब थामची पाइ यंग जागै बन अबिसा मुंसा रिखा अबिसा मुंसा सलाई खेता बन सराइमु कगंखा सराइ मेरे खलाइ खेता बन मताई बाई अबिसा ब्रिजांग माबाय बाक्सन तिप्रा राजा मैसिनिनि मकल यागनि गनिन नुग यांगै थांगा मकल सिनुग्लियाबो महाराजा मकल सिनुग्लिया आबदे तंगमुंग क्लाइसि चन्ताय क्लाइ जाखा वानामो कतर बमतायनि थानि राजानि अंगै सोंजाखा बिनिया अबिसा बाहेके हुजागनो हनै ब आफ्रो हिन्जाखाता मताय थानि महाराज वासुख लाबलियानि बागै अबतै सामुं सित्रा तांगै खिबि जाखा आबनि बागै खमा खलाइ रिजादि काइ थयै हिनिब ब कय साजाखा बन याकार राजानो याकारे रिसि दिनि सागादा बेज सामु हामिया तांक अब तो कग न फियाबा आइपन नुमा मताइबा बन याकारे रिजा सिदि आबो खनाबोय चन्ताइन महादेव साखा कलि जुगो बेबाग लुकुरंग न पा बेबा सामु सित्राव या प्रिसानानि वानसुक बायन ताबो वानसुक इसे तमैखिया आबुति पापिरनि बसखांग आं आनु मताइबोगै खुनपुरु तै मुगजा फैलिया ताबो मुगजा फन ओलतै नुजागि आं सागबाय थांनु जागै मताय बगमानि आ प्रसाद साफायलिया आकक ब कतन कफाक्रै दां दां खायन चन्ताइन साखा फियाबा मतायानि या प्रिमारि सिमिन नुजागान आकक साइकलांखा आबुदकरि बतै ब साखा मैसिली महाराजा तमु चाया एबा बतै ब साखा जे मैसिली महाराजा तमु चाया एबा तमु सित्रावान सुनै बरक बेनि बसा जलांगला पाप खलाइमा बगिन ब आबुनि यागनि योगै मानग्लाक गोबांमा खुलुम कबा खलायै कयजागमानि यागुल मताई कतर कंखा महादेवता ब साफिर बुखा मताईबा तैसे बखा नरम फिकाता बरनि थै मकल लुवै रिवै मानखाय नों मकल नुफिरि मानु फेबा कक थैजा खनादि नि बसागा बोरैबाय कुबुल कथ' खलायै तंखाय नों थै थांनाय कंखा ब थाङै तङै मानग्लाक बुफुरनि सिमि मकल नुन आबो सामबा थिनांगा सावै माननानि कगिया मताई खायै आ मताइनि थै मतायो खैमान जे थै बरंनिबो थै आमो मकल लुखायंगे जे हामनाय तैसे तामो ब बोरैबाय थुइमांग्लाक बिहिक बायफानो जेखुनु बोरै हम ब थुइमांग्लाक ताको बसाका इयाखै फियाबा मकल नुग्ला अकक सावैन मताइ कतर कमाय थांगो आयंगो राजनि मकल हामरैनानि बागै बरनि थै नांगो आबैन राजा मैसिली तिप्रा राज्यनि दफा कायसानि लुकरंन आ सामुंगो संखा आ दफान न मैसिली दफा हिन्जाग कंखा बर रमनाय जोंखाय मुसलि कानर हिनलायता ग्राम रग सिने सदर उत्तर मुसलि काना हिनलायो बर रमनाय आम मतायो रिनाफुरु बर रम फुंखा मुसलि आब ओ मुसलि काना हना आफुरु निसिमिन आसायखे हनै मानता बरगनि सामुंन मताय आतायो नांखाय बरग तान्नानि बागै बरग रुतुगै तुबुनानि बरगनि सामुं आमन तमुंग बरग नांखाय मतायो तान्ना नांखाय बरग रुतुगै तुबुनानि आको खनावै तिप्रानि लुकुर किरिजाग बैखा बरक से रुतुगै राज तानि मकल राजानि मकल हामरिनानि आको खनाबो बेलाय किरिजाग बैखा बरक तामुनि हुंबा मुसलि रक बुफुर साबने बसाबतिन बुमा बुफाने मकल कतन रमै तालांगै तानि खिबि आबो सावैमान ग्लाक बुमा बुफा बरकनि बसा सेलारुनि बागै बेबांन खाजक बुसुक तंख्राय ग्रै चाख्राय ग्रै उंजागै तंबायखा ओ आकग्र खनामान उलता आबो तैयै हिक सायनि बिसिंगबो केलेंलायमु बेलाय नुगजाखा फेलाय

नुकजाखा माफा सामूगियागनई खिबुई बसाने बगे नगो चक चक आजुकी टी मानो आपती कक जो बड़ो खानाखा बुमाबू फाराते आजुकी टसूमान आ बसानी जानव चक चक आजुगे सामूगियागनई खिबुई जत्तो गार्जियन रग्न बलंगो थाना नांग बुफानी बगे वा तान बगे बुफां तान बगे सनरानी बगे हूक तंगने बगे आबो तंगनाई न सब हूक हाबो थे नगो चक चक आजुगी टी मानना मानी टंगना से गरी ताप्त आबन बड़ बेबाग न बखाओ किरीमा हाबजग बो बहगे थी मानसी थी मान से बुनी बेलाय कस्टी दंखा राजनी हाव बेलाय हामियानी मारी नुकजाना लाइखा तमुई हिन्बा चेराई मासा सिंह रमुईत लंखाय बनते बड़ो रुतुगी मानना फेबा आहैखे रमुईत लंग बुरा सानी थानी बलिरी आब बुथी न मताई कतरनी ककती न राजनी मकलो लुमानी या गोलो राजनी मकल हामी थांगा राजाब मकल नुकफिरगा आपते खाली मताई खाने हामी थांगा राजाब नमल नुकफिरगा और वो कक्थे से सानानी आंगो आबंखा राजानी मकलनी बागे मुसिली दफानी लुकुरंगनी याक्ते बड़ रम रिमानी बागिन आ तिप्रा राजानी मुंगाफुर मैसिली फार जागो अंगा तंगमानी इंखा कौबा सालसा राजा मैसिली बुरा अंग तई जरानी रायजे रगै बबो सालसा और नखा तलानी हाइया करै आयं मासिंगो थांगी पायो बुबाग्रा मैसिली थैमाइया गुलो बुफायों चैतुंग फा तिप्रानी राजंखा ब तयसंफा एबा तेजंफा हनैबो सिनिजागै तंग आब राजमाला तई सावीमान हरखाता बिनी बसाजला नरेंद्र तई बुसुक इंद्रकित इंद्रकित तीनी बसामासा आसैख्या बिनी बुमुं विमान ब बेलाय रंगमारी गनां तंगी तंगमानी फियाबा बुफानुल ब तिप्रानी राजा लांखा बन पाइमारा सिनिबो लुकुर सिनिलायो बब सालकबां रमै लुकु पालाय लांखा बिनी बसाजला जसराज ब राजंखा तै बब बेलाय याकपाई कहामनि सिनेमुं रिलांखा राज्य सालुखानी अकक ब खनाका बिनी बसाजलांखा बंग ब बंगनि महाराज लांखा अ बंगनि महाराज उंगु हनैन बिनी मुं बंग हाइफा नुङै मानु बिनी बसलानि मुं गंगाराय माने बंगनि बसलानि मुं गंगाराय बिनी बसला साक्रुराय कंखा गंगारायनि बसलानि मुं साक्रुराय बब रायजोनि पन्जा माननांखा बफा थैमान गियागुल ब राजानि सिंहासन आजुगै लुकु पालैलांखा तामसे कक हासालौलांखा ब शुक्रराय एबा चित्रसेन हिनिब सिनिजागै दङ साक्रुराय ब शुक्रराय हिनब सिनिजागो रमदि मैसिले राजानि खतल आमरनो पाइखेदो मैसिले राजानि कक सातानि बिनुल जेरा जे किसु किसु राजुमा कोर आमर साइपेख्या ताबु प्रतीत खतल चेंगजाखा आबंका शुक्ररायनि बसलाता प्रतीत अ शुक्ररायनि बसासला खरक्सा आबनि मुं प्रतीत हेरम्ब बुबाग्रा बायब किचिं कामैनि हालक करंखा अ प्रतीत हेरम्ब राजा आदं खरक्सा रिहरका तिप्रा राजानि थानिव साहरका बरक्त बसं कायसानि न फाइलिमानि कपाल हामियानि बागैसे बसं कायसाव राजा खरनै ओंनानि नांगौ हेरम्ब राजा मु तिप्रा राजा सारमां ककता दाबो साका जोंबा ताखुक बाय ताखुक जे गलायलायो आपदेखे ताखुनै सालबोसोते कागै दंलायसिनाय फेबा जिनि बिसिंग कागलायमुं केबेंलायमुं आपदेर कुरै आपदे नुखाय जिनि बागै बुसु बुसानाय रक बेबां न किरिजाक बायन तमुन केबेमुं कसमुं तंलायखैता हंकाय तो किरिजाक बायग्ला केबेमुं कसमुं कुरै हंकाय बुइ तो किरिजाक बाय ताखुनै तमुं थानसा हंगायबा हेरम्ब राजा बाय तिप्रा राजा तो हंकाय नसे थै करंलायो बसं कासेन बरक से हिनि मानो जों खरंनिनो तंथकसा तोखै राजंगै राज्य बाक बुखलायै तंलायेन अक हेरम्ब राजा साकाता हेरम्ब राजानि अप्तिक कक काहाम खनावै तिप्रा राजा माने शुक्ररायनि बसाला जे राजाउनाय प्रतीत आबो बेलायके हामजाखा बहनका आता एबा ताखु ताखुअकरा अकक साका आबोसे कक आपति खे चिनि कक तलांगै हेरम्बनि बुबाग्रा दं थाङै पैख्या बिनि बुखुंनि कक तलांगैता हेरम्बनि बुबाग्रा जा दं ब थाङै पैख्या आबोनि यागुल तिप्रा राजा ताखुअकरा बाय मालायनो थांग ताखुअकरा माने हेरम्बै मालायनो थांगाता राजा खरंनि गोबांमा कक कोथै कोथै सालायै खरक्सा न ते खरक्सा बोखाबायन लामजाक सगलायख्या खरंनो नै गोरोंसाव आसुगै माया खरक्सा लायख्या हा करंनि दि कनिकाजार आरिब बलायख्या
kazang totokhe rajuni samung tangai tonglainyani kok.

आहो ताखु खुमारी की सिंग आशुक जरा चंग खना लाइका सिनी तीनी नी लाइबु मने कथमा पांदा लाइबु मने कथमा पांदा वचन खना लाइका सिनी कथमा रोग से साजाक तमने जंग पाइथको जंग नुखा महाराजा रत्न मानिको राजा चामानी आबुनी यागुलो जंग तेबो द्रग द्रग खै खना ओ महायनो गबांग मा राजा द्रग द्रग खलाये सिनि जों बुसकांगो सिनि थानि ताबुबो जों नुगो 184 जन राजानि बमु आबुनि बिसिंगो पुइला धर्म मानिक हिने जे मुं मानमानि 149 जे सिरियल नम्बर जों दिनै अजराव बनती किसीसा सायमान लायन जिनी पान्दानि पाइथाक फाइजिंगो आबनो कारे जों दिनै किसीसा जों लाइबुमानि कथमा ता आसक सायमेया जों हाइफानो किसीसा उदयपुर ताबुंनि जे उदयपुर एबा खेबा जे ताबुंनि गुमति डिस्ट्रिक्ट हिनै तमाने गुमति डिस्ट्रिक्ट नि अ बनते जों किसीसा कक थाजा थायनै से हालायन तामे तामेके जों अर आगिनि अ उदयपुरनि आगिनि बुमु रांगामाटी हिनै साजा गय दं हायाते मेना अ रांगामाटी पुइलाबो उदयपुरनि बुमु तमाने अ रांगामाटी वन त्रिपुरानि पुइला राजाखर हिनैबो साजा गय दं लायो अब बबो हाइके उनका ते ओ राजा खरो खरोक बुसुख राजा राजा चालंखा ओ उत

तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: हमा मनले सामासिना
1: इदो काकिले सपसि तंसला हामले
0: आया तमा लोपाबला नंग देबो सातिना तोय मारो फासि तुम
2: एहा आं सामा तोय फैवा आमा
0: लोपाबला हायरो खिसिनि ने काकी अबगियाले बुगीमा तंजासि लासि बियोग्या किरि बियोग्या हमा निखलाइगे
1: काकी मेरो नि दुख कष्ट न गुते आं सिसि सोइमालिया
0: सोइमालिया हने बतमाले खलाइसिनैबा गपालो जे बुगिनि बातानो न मा बुगी लाइसिनैका आसु सरकारो रां गबां ममाय ससि तेसा मालिया हंखेबा
1: तेता सासिदि काकी तेता सासिदि कोरोनो खनाय आनि बखा तेस सोइमालिया सो तो दो ताबोनि खिपी ओ देकोलोने रां मा हि चाउ नुमुय जेमा तांगना रनो दे सोइतो जो वाइसा बाय जम राजारो तिके तारे रनो सोइतो रनाय
0: इ हाइपा खलाइग्रा याइले ते ओ जागा सफायग्रा नालिया होखे बुला माइसाय थांसिदि दो
2: इन दादा माइसाय थांसिदि न
1: आपति काकी हाया तमाने मेरो वास मखन बेहाया के तो मानो बांग चनाई बो ए आंसा लई या
0: जेफा के फान माइ खसा सा लई माने ल जुगाल तो बोला हमले बोनो न साय थांग जि का फु
2: दा नंग संग्री बरक नही माइ से सा नि पेंग ल्यांगला
1: हाय जे आपति उ कोरु तलांग मा हिंदी आस के साय थांग से ने
0: हिंदी आ को
2: तमाने आसो बुतवा सबले तंगबाय लंखाबो लाहासलिं फाइफ नङा रहै दु हमबायना हमाले किसा तमन बक्स तमास तमास फाइलि आं बायलांबो बनो नासिं ते सिंगलिया का आं जि आं मान अंग सोंमा तंसिनाय
0: बाप्रे कपरा खै कार जागबा खसो पाइ सि बिदिं सोबा बका सुंनाय जाबा मत कतु खिसि लाइसि बका
3: तो बग्रास दे न दाबार कांग सो बैलंग मनिया दे
0: हरे रंग साम थांलाय मारो बिदिं बल हनाब्ले
4: प्रोदान मेंबर सरो लगे तंगु बिदे साम साया खाना
0: आ खाय मले हाय न गेंग को मा प्रोदान ले
1: नोंया साया होय नक तंग रुक बैला हा आया गबे तो कांग सले ते नुंग लाय मा खाब ले तिखले रो फासि दि को तम दुरे तंगलांग का
4: आ तंगखे रो सरो फासि दि आइ गेस ति कांग मा दु सोस तंग हन दे
0: हिंगे नरा ज तार बुथिखे माइ साला ने हि फाइना ब्ले
1: आ चला हि सि बाजन ने मुई शेर था ते मारु शेर नै ते फेलांग मनि आ दे
0: हिंगे फासि को तो न गाति ओ बुथु कि नुंग लाय मा हम ब्ले मामे सु दु तै
4: गबुइ बो बो साउ नुंग
1: हि दा कांग बो साउ नु फरी
0: तमासा आफु बास दगै दङा यां गागा ओ यां गागा त सने बुथो ओसि थांमाबा हाले लोपास नाय माया गना बरोन जे जागाव फान सुबा नाय जात बरो बने सा बिखरा जांग गरे रावन सुनाय न सुबा जाग उफ अमते हाय खलाई गरे बरो फान सुबा मुंग तोंला खेबा जतनि थानिव न खाक सामा तोंला जाखा मुंग दे
4: हाले थुया खगु जाना ब्ले गलो गलो
0: थुनले बाके थुमानायब अगो माइसिं क्रिग्रा खलायिबा
4: तमा निरोबा बुमा बसा बिका बिया हिला मख थांलाय नाबले
0: बिका बि हने बासनो सबाले फातिने फातितानि रय दंसिनायबा
4: आसे हाके माया जा ओके तमानिले निरो बिका बिया हिमा थांलायब हुद्दा हुदि मखां सख दर खलायु
0: जालायले तंगले मानियाबले किबा माला मखला हाया तो
4: निरो न सारो वाहि उले रां 5000 तो बय फायो नो माय क्रिपा रांगले तंगो रांग रांग उले नाय फेदे
0: ता कोन ने रांग माय फमन बे कोन ना सा के ता सादि बैखना थौ जाय गबांग मा तंगसि
4: ता मानि खना थौ जाय या बांग नें लां खाबो तमांग दाला दे साय तंगा उले नाय फेबे दे 5000
0: तमा म खां बे हया खलाय बाजार बा मिसिं बु फारु जों मा थां मान बा पदे पोसा लां खा तमो
4: मुनि सोखे आसै बा हाय बु मांग हे बु मांग को हा कबुई निरो कबुई दे तिनी माइमा से खग जात मा
0: तमा हिनो न बा अंदाला साइ तो नाइ बो आसे बिसा साइ हम के बा माइते खै फियो नाइ मा ब्ले
4: कोदी आसे के तिनी खिपि दुकान चुकती पाइ नाइ ग्रा हे दुकानदार

आशिक जरा तुम लोग हमारे निखरंग ते सीने का पवित्र जमातिया खनारा जाखा तब रचा मुंग को खरंग रवाना रूमी मोरा सिंह

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपेन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की

तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे

चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।